0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4वां संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is scheduled to continue till October 7. The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step towards grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during the journey.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The fourth edition of the UP International Trade Show, UPITS, will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. Themed Ultimate Sourcing begins here. The exhibition will continue till September 29, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. Briefing the media, Uttar Pradesh MSME Minister Bhupendra Chaudhary highlighted the objective of establishing Uttar Pradesh as a global sourcing hub. He said the state is home to over 96 lakh MSME units and stated that UPITS will provide them with new opportunities for market expansion, investment, exports and employment. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has signed the first high-value deep tech project agreement with a startup named Zero MK India Private Limited towards collaborative effort for indigenous development of a 20 MK dilution refrigerator for quantum applications. It is the first high-value agreement under the 500 crore rupees corpus earlier approved by Defence Minister Rajnath Singh for deep tech and cutting-edge projects. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar

100.1 FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। जी हाँ दोस्तों, एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रिमझिम रिमझिम बूंदों के सुरीले संगीत ने कर लिया है आपका इस्तकबाल। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिल ने भी दुआओं के गीत गुनगुना दिए हैं और आपके अभिनंदन और प्यार भरे सलाम के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम सुहानी सुबह की। किसके साथ बताऊंगी इस गीत के बाद।

जी हाँ दोस्तों, हमारी मुलाकात तय थी और तय मुलाकात के अनुसार मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ, आपकी दोस्त। जी हाँ, मैं हूँ सविता पोद्दार। आपसे वादा करके गई थी कि 25 तारीख को मिलूंगी, तो लीजिए हाजिर हो गई स्टूडियो में लेकर सुहानी सुबह और हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ऐसी ही दुआओं के साथ आइए हम कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत तो आपकी चाय की चुस्कियों से हो ही चुकी है। अखबारों की सुर्खियां हमारे पास है, लेकर आ गए ना, चिंता किस बात की। दोस्तों, आज के अखबारों की सुर्खियां कुछ खास इस प्रकार से हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्किट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नारुका को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एशियाई खेलों में स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत का यह पहला पदक है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के उत्कृष्ट टीम वर्क और निरंतरता के प्रदर्शन से इन खेलों में स्किट में भारत के मजबूत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर सीमा कुमारी को भी बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके शानदार प्रदर्शन ने इस स्पर्धा में भारत के 16 साल के पदक के इंतजार को समाप्त कर दिया। 16 साल के पदक को इंतजार को समाप्त करने के बाद उन्होंने उसे सीमा के खेल सफर में यादगार उपलब्धि और अपार गर्व का क्षण बताया। राष्ट्रपति ने खेलों में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत पदक जीतने पर MR पुवम्मा, विथ्या रामराज, मनु टी एस और विशाल टी को भी बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके सराहनीय प्रदर्शन और टीम वर्क ने भारत के एथलेटिक्स सफर में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है। तो दोस्तों, हमारे सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से भी हार्दिक बधाई और आने वाले खेलों के लिए शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे एक और खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य मंथन 2026 में डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ी नई पहलों का करेंगे शुभारंभ। जी हाँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष बैडमिंटन टीम को दी बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पदक टीम का जुनून और कड़ी मेहनत दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। इसके अलावा दोस्तों, एक और खबर आपके लिए है। INS त्रिशूल 24वें भारत फ्रांस समुद्री अभ्यास वरुण में भाग लेने फ्रांस में टूलोन पहुंचा। INS त्रिशूल भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल

0: और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
2: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर। आपकी दोस्त सविता के साथ सुहाने सफ़र में चल रहे हैं हम। जी हाँ, सुहानी सुबह का सफ़र है ये, और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आज के दिन का मौसम का हाल कैसा रहेगा ये तो सब आपके मन में चल रहा होगा। जी हाँ, आपकी आंखें टिकी होंगी आसमान की ओर और सोच रहे होंगे कि क्या होगा, बरसात होगी, रिमझिम बादल बरसेंगे या फिर उजली उजली धूप निकलेगी। तो दोस्तों, ये तो आंख मिचोली है बरसात की और सूरज की, ये तो आंख मिचोली सारा दिन करते रहेंगे। आपको तो अपनी तैयारी के साथ बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी तैयारी करनी है ये तो मौसम का हाल हम आपको बताएंगे और आप ये जान करके अपने दिन का प्लान कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और मौसम की जानकारी ले लेते हैं। आगामी 24 घंटों में कोलकाता में दोस्तों आकाश में साधारणता बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की से मध्यमतर बारिश होने की संभावना है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान कल का 29.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम था। अधिकतम नमी 98%, न्यूनतम नमी 88% कल 0.49 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही दोस्तों, मौसम की जानकारी समाप्त हुई। अब आप प्लान कर सकते हैं कि आप इस मौसम को देख करके कैसा रिएक्ट करने वाले हैं। आपका मन मदहोश होने वाला है या नहीं, लेकिन मैं स्टूडियो में बैठे बैठे मदहोश जरूर हो रही हूँ आज के मौसम से।

जी हाँ दोस्तों, मेरा मन तो मदहोश हुआ जा रहा है और शरारत करने को भी मलचा रहा है, मचला रहा है, लेकिन ये ऐसा करने से चलेगा तो नहीं। बैठे बैठे हमको कुछ काम भी तो करना होगा और इसी काम के दौरान एक जरूरी सूचना आ गई है जो आपको हमें साझा करनी है। जी हाँ, आपके साथ साझा करनी है और ये खास सूचना है डाक अदालत। तो आइए साझा कर लेते हैं आपके साथ। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-01 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल हावड़ा 7111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों या शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332649159 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस बीसी का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

जी हाँ दोस्तों, आंखों में कयामत के काजल लगाकर आप किसकी तकदीर बदलने वाले हैं वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन हम तो कार्यक्रम में रोमांटिक सॉन्ग सुनवाकर आपके दिन की शुरुआत रोमांस से भर देना चाहते हैं। आपकी दोस्त सविता के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह, और 7:28:54 हो चुके हैं। लगभग हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है। 8 बजे तक आपकी दोस्त सविता आपके साथ रहने वाली है, और एक और गीत सुनवाने के बाद, जी हाँ, इसके बाद हम आपको आपके साथ क्या करेंगे, आपके साथ आज के दिन का इतिहास करेंगे साझा। लेकिन फिलहाल तो हम चाहते हैं आप हमारे करीब आ जाएं, दूर ना रहें, बिल्कुल अपने फ़ोन सेट के साथ या रेडियो सेट के साथ जुड़कर हमारी बात सुने, हमारे गीत सुनते रहें और कार्यक्रम करते रहें। एंजॉय।

0: kaç kedin?
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल हम FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। दोस्तों इतिहास कहते हैं ना, महज एक शब्द नहीं है, ये एक दस्तावेज है अतीत का। घटनाएं, कारनामे, कीर्तिमान, महापुरुषों के योगदान इतिहास को करते हैं समृद्ध। और यह इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी एक दीप बनकर मार्गदर्शन करता है वर्तमान का, भविष्य का। तो ऐसे ही इतिहास को आइए साझा कर लेते हैं आपके साथ।

दोस्तों 25 सितंबर के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो विश्व और भारत के इतिहास में हो गई हमेशा के लिए दर्ज। उसमें पहली जो घटना है इसके बारे में हम आपको बताएं कि विश्व फार्मास्ट दिवस स्वास्थ्य में सुधार लाने में फार्मिस्टों की भूमिका को मान्यता देने का दिन है। और हम ये दिन की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके साथ आज के दिन का इतिहास साझा कर रहे हैं जिसमें 25 सितंबर को क्या खास मनाया जाता है। इसमें है 25 सितंबर 1237 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच साझा सीमा को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1340 में इस दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने निरस्तीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1524 में वास्को डी गामा वायसराय के रूप में अंतिम बार भारत आए। 1639 अमेरिका में पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया गया। 1846 अमेरिकी सेना ने मेक्सिको के मोंटेरे पर कब्जा कर लिया था। 1866 में अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस हंट मॉर्गन का जन्म हुआ। 1881 लू शॉन का जन्म हुआ जो एक अग्रणी चीनी लेखक निबंधकार और साहित्य आलोचक थे जिन्होंने आधुनिक चीनी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1897 अमेरिकी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम फॉल्कनर का जन्म हुआ। 25 सितंबर 1911 में टूलोन बंदरगाह पर फ्रांसीसी युद्धपोत लिबर्टे में हुए विस्फोट में 285 लोग मारे गए और 1913 में मारिया ताना से एक प्रसिद्ध रोमानियाई गायिका और अभिनेत्री जिन्हें अक्सर रोमानियाई लोक संगीत की रानी कहा जाता है, साथ में 1952 में क्रिस्टोफर रीव एक अमेरिकी अभिनेता निर्देशक और पैरोकार जो 1978 की फिल्म और उसके सीक्वल में सुपरमैन के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे अच्छी तरह से जाने जाते थे। दोस्तों 2006 में अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले ईरान की पहली महिला अनुशे अंसारी ने देश के इतिहास में नया अध्याय रचा था। 2009 में भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 5000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए आपके साथ साझा। आज के दिन कुछ खास व्यक्तियों ने भी जन्म लिया उसके बारे में हम साझा करेंगे। फिलहाल तो ये दिल दीवाना है ये गीत सुनने के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है कि हम किसी ना किसी के दीवाने होते हैं। कोई प्रेम का दीवाना होता है, कोई घूमने का दीवाना होता है, कोई खाने का दीवाना होता है, कोई दोस्ती का दीवाना होता है, कोई इधर उधर घूमने का दीवाना होता है, कोई पुस्तकों का दीवाना होता है। दोस्तों, और हम हैं आपके दीवाने, तभी तो चले आते हैं हर दिन हर सुबह लेकर के आपके लिए कार्यक्रम सुहानी सुबह।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह। सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
0: तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त। 7:42 हो चुके हैं और आज के दिन कुछ खास व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिनमें हम आपको बताएं दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर 1916 मथुरा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ये भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रतिभाशाली विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन्हें जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्म के आधार पर भारतीय संस्कृति को विभाजित करने वालों को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते थे। वे न केवल एक हिंदू राष्ट्रवादी थे बल्कि भारतीय राजनीति के अग्रदूत भी थे। दीनदयाल का मानना था कि हिंदू धर्म कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकीकृत मानवतावाद, साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की आलोचना करती है। एकीकृत मानवतावाद मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृष्टि के नियमों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक वैकल्पिक संदर्भ प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमने बात की दीनदयाल उपाध्याय की, जिनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1916 को। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक और गीत लेकर आए हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे और धीरे धीरे ही चलेंगे। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हमारे जो लाउड स्पीकर चलते हैं या हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना दोस्तों, हम बहुत तेज़ आवाज़ में चला देते हैं, लेकिन उसको एक साउंड को एक बंधन में बांध करके, जी हाँ, उसको थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल चलाना चाहिए, ताकि हमारे जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। हम तो यही गुजारिश आपके साथ करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि अब हमारे जाने का वक्त तो आ गया है, लेकिन 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में आज हम सुनने वाले हैं किसको। जी हाँ, आपके हमारे सबके प्रिय फेवरेट गायक कलाकार मोहम्मद अजीज को। जी हाँ, उन्हीं की यादों बातों और गीतों का

सिलसिला चलेगा कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में, तो सुनना बिल्कुल ना भूलें। और 10 बजे नॉन स्टॉप गपशप पर भी आपके साथ मुलाकात होने वाली है आपकी दोस्त सविता की, 10 बजे FM रेनबो पर 107 पर। तो फिलहाल के लिए आपको एक गीत सुनवाऊंगी और बताऊंगी कि मैं 30 तारीख को आपके साथ फिर से

जी हाँ दोस्तों, सुहाने सफ़र में हम सुहानी सुबह का सफ़र तय करते करते आ गए हैं कार्यक्रम के अंत तक। लेकिन जाने से पहले वादा ये है कि 11:10 पर लो आ गई उनकी याद में मुलाकात हमारी होने वाली है, और 10 नॉनस्टॉप गपशप पर 9:10 पर कार्यक्रम रसधारा में भी आपसे मुलाकात होगी। और चलते चलते भगवान गौतम बुद्ध का एक विचार आपके साथ जरूर साझा करूँगी कि उन्होंने कहा है कि किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बस थोड़ी सी नज़र को अपनी को सावधान रखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए। बस इसी दुआ के साथ आपकी दोस्त आपसे गुजारिश करेगी कि हंसते जरूर रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए, खिलखिलाते रहिए और ज़िंदगी का सुहाना सफ़र तय करते चलिए। अंतिम गीत के साथ दीजिए मुझे इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सबको धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की,

0: रागी की रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
1: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान

भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री

0: लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है, आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संवाद।
1: की धारा को वडनगर तक ले जाता हुआ जन हर गांव, हर चौपाल पर लोगों से सीधा संवाद, सेवा हर पड़ाव पर सेवा से ठोस कार्य और संकल्प, सेवा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। 17 सितंबर को वाराणसी और वडनगर से एक साथ शुरू हुई इस यात्रा में 20 टोलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन 10 राज्यों, 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1159 गांवों से होकर गुजर रही है। वाराणसी से चली 10 टोलियां माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, गोमती, सरयू, नर्मदा, राप्ती, संगम और बेतवा के नाम से सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। बाबा विश्वनाथ से हाटकेश्वर महादेव तक वाराणसी से चले सेवा यात्री उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों का जल लेकर हाटकेश्वर महादेव जी को वडनगर में जलाभिषेक करेंगे। हर पड़ाव पर एक सेवा, लगभग 25 प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, मेडिकल केयर किट वितरण, अंगदान का संकल्प और एजुकेशन किट वितरण, ऐसे कई 25 जैसे सेवा के कार्य बीच में हो रहे हैं। स्वच्छता से स्वागत, यात्रियों के पहुंचने से 2 दिन पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा भी।
0: ये थे सेवा संकल्प यात्रा में शामिल एक यात्री जो इस यात्रा से संबंधित जानकारी दे रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से भी बातचीत की थी। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक 17 हो गए हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. Now we go over live to the function where Prime Minister is interacting with the participants of the Seva Yatra.
3: Purva Vidhan Sabha ke
4: gaon mein pehle ye to bataiye aap sab theek hai na?
3: Ji ji hum log sabhi bachche hain
4: koi takleef shareer mein koi bimar bimar to nahi hue sabhi
3: nahi
4: nahi ne har din itni gaadi chalani pad rahi hai तो परेशानी तो होती होगी।
3: नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे यात्रियों के अंदर इतना ऊर्जा है, इतना प्यार आपके लिए है कि बहुत ऊर्जा के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं प्रतिदिन।
4: अच्छा आप अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और कई जगह रात रुकने का अवसर भी मिलता है, गांव के लोगों के बीच रहने का, उनके आतिथ्य भाव का और उनके परिवार के साथ जुड़ने का जो अनुभव आपको इन दिनों हुआ है, क्या ऐसे कुछ अनुभव आप लोग बता सकते हैं?
3: जी जी मैं औरैया के बिधुना गांव में, एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए गया था। चिल्लू जी थे, मैं जैसे ही हम लोग चार पांच सेवा यात्री वहां पहुंचे उनके यहाँ, उनके इतनी उत्साह, इतनी खुशी से हम लोग का स्वागत फूल छिड़क कर किया। और उनके एक छोटा बच्चा था, बोला भैया भैया भैया लोग मोदी जी के गांव जा रहे हैं, भैया जी मोदी जी के गांव जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बैठे हम लोग, फिर साथ में हम लोग खाना भी खाया। वहां का ट्रेडिशनल जो फूड है, जो कि आलू मट्ठा की सब्जी और बाजरे की रोटी, उन्होंने हम सभी को अपने साथ बैठ के खिलाया।
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said, India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy. The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky today. The IMD said the maximum temperature in national capital will be around 33 to 35 degrees Celsius, while the minimum temperature will hover around 22 to 24 degrees Celsius. In Asian Games, the Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh stormed into the final of the mixed team 10-meter air pistol event after topping the qualification with a strong performance today in Nagoya, Japan. And defending champions, India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the 8th round of the FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
5: গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है।

0: युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इस में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते, इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi said that Viksit Bharat can be realized only with contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. During the interaction, these Yatris shared their personal experience.

राष्ट्र समाधान के प्रति अपना स्पष्ट और निरंतर समर्थन दोहराया। ब्रिक्स रंगमंच महोत्सव 12 अक्टूबर से नई दिल्ली में। भारत, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका समेत 9 देश प्रस्तुतियां देंगे। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में आपसी संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने दिन की शुरुआत एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ बैठक से की। दोनों नेताओं ने भारत के विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय के प्रमुख जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती और जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमन सफादी के साथ पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्रिटेन विदेश सचिव एड मिलबैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संघर्षों के बीच खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ भी क्षेत्रीय घटनाक्रम और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर पेनी वोग, उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओर्सी, मालदीव की विदेश मंत्री इरुथी श्याम आदम, घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अबालोक्वा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साकाना के साथ भी बैठकें की। विश्व दर्पण समाचार के लिए अलका सिंह।
0: भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी जोर देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मॉडल जन केंद्रित और समावेशी है तथा सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि विकास केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की क्षमता बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने से भी जुड़ा है। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस की सह मेजबानी में आयोजित सुधारात्मक न्याय से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों के प्रति भारत की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए श्री जॉर्ज ने समावेशी विकास, वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया में शांति, लोकतंत्र, विकास और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों के बीच विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। उन्होंने निशस्त्रीकरण और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए बांग्लादेश के समर्थन की बात कही। रोहिंग्या संकट पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में रह रहे 12 लाख से अधिक रोहिंग्याओं की सुरक्षित और स्थायी म्यांमार वापसी में सहायता करने की अपील की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स थिएटर महोत्सव 12 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 3 दिन के इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर रहा है। नई दिल्ली में संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि साझा कहानियां, साझा भविष्य विषय पर आधारित ये महोत्सव विविध नाट्य परंपराओं को रेखांकित करने और साझा मानवीय अनुभवों को उजागर करने का एक प्रयास है।
3: 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में हो रहा है। 5 वेन्यूज हैं और नौ ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 11 प्रोडक्शंस दिखाई जाएंगी और ये प्रोडक्शंस के साथ जो प्लेज होंगे उसके साथ साथ वर्कशॉप्स भी होंगी। और ये जो थिएटर फेस्टिवल है ये थिएटर लवर्स के लिए ओपन रहेगा और इसकी टिकट सेल बुक माय शो पे होगी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे होगी।
0: उन्होंने कहा कि ये महोत्सव पिछले महीने आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई भोपाल घोषणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में 100 से अधिक कलाकारों के भाग लेने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्रंजन

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के सात सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का भी आग्रह किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों को बनाने और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग पनीर का अर्थ है कि जो वास्तविक दूध के बजाय अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों के कामकाज और प्रसारण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के सामने आ रही समस्याओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना और समस्याओं के समाधान तलाशना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है।

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला।

0: जाको राखे ताईया मार सके ना कोई ए, जाको राखे ताईया मार सके ना कोई अरे जाको राखे ताईया मार सके ना कोई अरे बाल ना पाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए
1: जाको राखे ताईया मार सके ना कोई अरे बाल ना पाका कर सकेगा।
2: जी हाँ दोस्तों, पहचाना इस आवाज को, भला भूले भी कहाँ होंगे। हाँ, बात कर रही हूँ मैं मोहम्मद अजीज़ की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 जुलाई 1954 को मोहम्मद अजीज़ का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था सईद मोहम्मद अजीज़ उल नबी। वह रेडियो पर अक्सर गाने सुनते और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को वो इतना पसंद करते, उसमें इतना डूब जाते कि वो रेडियो से लगे रह जाते। जैसे मर्फी रेडियो के विज्ञापन का जो मुन्ना दिखता था ना, उसी तरह से वो भी उसी रेडियो से जुड़े रहते। लोग इसी कारण बचपन में प्यार से लोग उन्हें मुन्ना कहने लगे और तब से तमाम गानों के क्रेडिट में मुन्ना अजीज़ ही लिखा जाता है। दोस्तों, बात आज हम करेंगे मोहम्मद अजीज़ की। जी हाँ, पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ की, जिन्होंने 20,000 से अधिक गाने गाए और उनकी गायकी एक चरम पर, एक लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई थी। चलिए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ दूसरा एक और गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। उसके बाद हम बात करेंगे उनके कुछ किस्सों की।

दोस्तों कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ की, और मोहम्मद अजीज़ का सफ़र, संगीत का जो सफ़र था वो शुरू कैसे हुआ ये आपको बताएंगे कि बचपन से संगीत में विशेष रुचि रखने वाले अजीज़ ने कोलकाता में संगीत की ट्रेनिंग ली। वह पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मोहम्मद अजीज़ बतौर गायक रेस्टोरेंट में गाना गाते थे। तभी उनकी मुलाकात एक निर्माता से हुई और उन्होंने बंगाली फिल्म ज्योति में गाना गाने का उन्हें मौका दिया। इस फिल्म में संगीत देने के बाद वह संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए मुंबई चले आए। साल 1970 की बात है। मोहम्मद रफ़ी पुनर्खोज के दौरान एक अच्छे सिंगर को साइन करने के लिए संगीत निर्देशकों में होड़ लगी थी। उस दौरान रफ़ी साहब गले की बीमारी से थोड़े परेशान थे, जिसकी वजह से उनका सिंगिंग का काम वो कुछ कम कर रहे थे। साल 1980 में मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक उनके जैसा गायक खोज रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद अजीज़ आए और संगीत की दुनिया में उन्होंने बिखेरा अपना जादू।

0: आइए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक सूचना साझा कर लें। डाक अदालत अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या फिर ईमेल rmssvdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल हावड़ा 7111 को इस प्रकार भेज सकते हैं। वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

आलय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अपनी मखमली आवाज़ से मोहम्मद अज़ीज़ कुछ ही समय में लोगों के दिलों पर छा गए। साल 1984 में उनको फिल्म अंबर में गाना गाने का मौका मिला। इसी दौरान फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई का अज़ीज़ पर ध्यान गया। फिर उन्होंने अज़ीज़ की मुलाकात अनु मलिक से करवाई। इस मुलाकात के बाद उनको फिल्म मर्द में गाना गाने का मौका मिला। फिल्म के टाइटल ट्रैक के कारण वह लोगों के दिलों पर छा गए थे। मोहम्मद अज़ीज़ ने कई सुपरहिट फिल्मों जैसे त्रिदेव, आदमी खिलौना है, चालबाज में गाने गाए। एक ऐसे सिंगर के रूप में जाने जाते हैं जिसे हिंदी के साथ साथ बंगाली और उड़िया फिल्मों में गाने का रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद अज़ीज़ को अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म मर्द के गाने मर्द तांगे वाला ने मशहूर किया। ये मौका उन्हें अनु मलिक ने दिया और फिर तो बस मोहम्मद अज़ीज़ संगीत की दुनिया के चर्चित गायक बन गए। फिल्म हम का ये गीत

दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज़ की, और मोहम्मद अजीज़ ने मर्द तांगे वाला आपके आ जाने से इमली का बूटा दिल दिया है। जहाँ भी रहेंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन जैसे शानदार गाने गाए और जो आज भी सबकी जुबान पर रहते हैं। इसके बाद मोहम्मद अजीज़ ने गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे कई अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दी, और लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल जैसे कई बेहतरीन गायिकाओं के साथ युगल गीत भी गाए। दोस्तों आपको बताऊं मोहम्मद अजीज़ के बारे में कि सातवें सुर में गाने वाले मोहम्मद अजीज़ का नाम उन चुनिंदा गायकों में शुमार है जो संगीत के सातवें सुर में गा सकते थे। एस चंद्रशेखर के निर्देशन में बनी फिल्म आज़ाद देश के गुलाम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर सारे शिकवे गिले भुला के कहो गाना मोहम्मद अजीज़ ने संगीत के सातवें

गहरे सुर में गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनकी इसी खूबी को पहचाना और बाद में इनके साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया और उनके साथ वे सुर की गायकी का बखूबी इस्तेमाल किया। तो आइए सातवें सुर में गाए हुए इस गीत को हम जरूर सुनेंगे फिल्म आज़ाद देश के गुलाम में से।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ ने अपने पूरे जीवन में 20,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। उन्होंने हिंदी सिनेमा की हर बड़ी शख्सियत के साथ काम किया। मोहम्मद अजीज़ 80वें और 90वें दशक के सबसे बेहतरीन गायक माने जाते हैं। इन्होंने राम लखन, खुदा गवाह, वतन के रखवाले, त्रिदेव, स्वर्ग, हीना, आदमी खिलौना है जैसी कई हिट फिल्में दी। मोहम्मद अजीज़ के आपके आ जाने से इमली का बूटा, बेरी के पेड़, कलम, कागज़ कलम, दवात और मेरे दो अनमोल रतन, माई नेम इज़ लखन, तुझे रब ने बनाया होगा जैसे कई गाने कालजयी गीत बन चुके हैं। 27 नवंबर साल 2018 में मखमली आवाज़ के जादूगर के निधन के बाद संगीत की दुनिया में एक खालीपन आ गया। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ के इतने गीत हैं कि हम एक प्रोग्राम में समेट ही नहीं सकते। कितने ही मेरी प्लेलिस्ट में वो गीत रह गए जिन्हें मैं सुनवाना चाहती थी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, सलमा आगा के साथ जा, सावन के झूलों ने मितवा भूल ना जाना, मैंने दिल तुझको दिया, रोको ना जाने जा, ऐसे ना जाने कितने गीत थे मेरी प्लेलिस्ट में लेकिन अधूरे रह गए। कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर मोहम्मद अजीज़ के साथ एक बार फिर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे आपकी दोस्त सविता को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम से विदा लेने की। फिर आऊँगी ऐसे ही किसी दिन। मैं आपकी दोस्त थी सविता पोद्दार, 101.1 FM गोल्ड यानी खरा सोना पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और चलते चलते फिल्म कर्मा का ये गीत आपकी नज़र। करते करते कहूँगी खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी दोस्त सविता को याद करते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा. और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है. अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है.
2: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among women of the country has also increased. And Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today launched the Capacity Enhancement for Effective Forest Management Project to support forest conservation practices. Addressing the inaugural session of the project launch in New Delhi, he said the project will promote innovation and the creation of more facilities in state forest institutes. Mr. Yadav said this project has been launched with an outlay of approximately 537 crore rupees with the objective of providing the forest personnel the training of common protection competitiveness and region-specific knowledge. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the fourth edition of International Strategic Engagement Programme INSTEP at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, reflects collective well-being of people around the globe. He said this philosophy provided an opportunity for the foundation during India's G20 presidency and continues to guide India's approach towards inclusive and cooperative international engagements. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0. The Yojana is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The duration of the training varies from 3 months to 12 months. The Rural Development Ministry said all the 31 participating states and UTs have been allocated more than 9 lakh targets under the scheme over a 2-year period. Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has said Iran has offered a 7-day plan to end the conflict in West Asia, reopen the Strait of Hormuz, and resume talks on its nuclear program, according to a report of the New York Times. Mr. Araghchi said the proposal was conveyed to the United States through intermediaries and included certain conditions under which the Strait of Hormuz would reopen by the 7th day and nuclear talks would restart. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the weather agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana for the day. In the Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo Yeon Hong and Geon Choo, who took silver with 478. And with that, we end this news bulletin.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. The External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have

0: classification with 587 points, including 29 inner 10s. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of 3 medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar reaching the mixed double semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last 4 in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone. Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियाँ आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं, और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं

0: युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध हो।

0: होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें

बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

0: আর অনেক গান নিয়ে ফিরে আসছি ঠিক 3:10। সুদীপ্ত আর কোয়েল, এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। हमारे ओडिशा संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 12 घंटे में यह दबाव और कमजोर हो सकता है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है।
3: मालकानगिरी में कई बड़े पुल और सड़कें पानी में डूबे हुए हैं, जिससे पड़ोसी जिलों और आंध्र प्रदेश से सड़क संपर्क टूट गया है। नेशनल हाईवे 326 पर पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जबकि भूस्खलन और गिरे हुए पेड़ों ने संपर्क व्यवस्था को और बाधित कर दिया है। दक्षिण उड़ीसा में लगातार बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए इंद्रावती बांध के 5 स्लुइस गेट खोल दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मुंबई में आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में ये बापा की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। ढोल ताशों की गूंज, पुष्प वर्षा और गणपति बापा मोरिया के जय घोष के बीच परिवार और गणेश मंडल अपने आराध्य को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। लालबाग चराजा और मुंबई चराजा के विसर्जन शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पूरे शहर में 24,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल।
5: एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। दक्षिण कोरिया को रजत और ईरान को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल।
2: एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। दक्षिण कोरिया को रजत और ईरान को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। कबड्डी में भारत की पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने जॉर्डन के मोहम्मद अदनान अबू को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने मालदीव के अहमद दिबाल और अब्दुल रजाक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने पहले दौर में

0: कोरिया की सुंग यू मी को पराजित किया। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर निशानेबाजों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाले जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। मानु शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 21 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: चाय और क्लासिक्स में चैनिका कर रही है आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, बहुत जरूरी दो बातें आपसे मुझे साझा करनी है। पहली ये कि मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मध्यम आंधी तूफान और गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हो सकती हैं और ऐसे हालात बन रहे हैं मालदा और बीरभूम जिले के कुछ इलाकों में। आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए मालदा और बीरभूम जिले के कुछ इलाकों में इस तरह की ये ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसलिए आप सब सतर्क रहें, सावधान रहें। और जो दूसरी बात, वो भी इसी तरह की सिमिलर सी एक वार्निंग, एक चेतावनी, ऑरेंज वार्निंग मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, हल्की से मध्यम आंधी के साथ गरज और तेज बारिश होने के आसार, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ऐसी परिस्थिति दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर जिलों में आने वाले 2 से 3 घंटों में हो सकती है। तो आप सब सतर्क रहें, सावधान रहें। ये थी मौसम विभाग की चेतावनी, ऑरेंज वार्निंग दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम जिलों के लिए। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हम सब जानते हैं ना। तो सावधान रहते हुए आप क्यों नहीं रेडियो के शरण में आ जाते, हमारे साथ बने रहें। और भी कुछ अगर अपडेट्स आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। और यहाँ रहेगा क्लासिक्स का साथ, तो कैसे बिगड़ेगी बात, हमेशा हमेशा हमेशा हम रहते हैं आपके साथ, कैसे भी हो हालात। तो जुड़े रहें FM गोल्ड कोलकाता पर चैनिका के साथ। इससे पहले कि क्लासिक्स का जो सिलसिला है उसे शुरू किया जाए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा आप सबके लिए। मैं रहूंगी बाबा शाम के 6:30 तक। फिलहाल एक ब्रेक और उसके बाद सुनेंगे एक खूबसूरत

मानो हम बुला रहे हैं चाय और ग्लासेस को कि भाई ये रानी नहीं तो कम से कम आपकी इस समय का राजा तो हो ही सकता है। रोज़ाना ये जो शाम की ये जो सौगात लेकर आता है, ये दिन इस समय को कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन सा हो रहा है। पूरे दिन की जो थकान है वो हम कोशिश करते हैं कि उतार दें आपकी, और आपको कुछ इतने खूबसूरत गीत सुनवाएं कि शाम से लेकर रात तक का आपका मूड धीरे धीरे बने, परिवार के साथ आप अच्छा सा समय बिताएं और रात को एक बेहतरीन नींद ले पाएं। इसी के लिए तो क्लासिक्स का ये जो साथ है ये हम कोशिश करते हैं आपको रोज़ाना मिलता रहे। आज चैनिका है हाजिर, तो मतलब अलग कोई बात तो हो ही नहीं सकती। गाने इतने खूबसूरत हैं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं रोज आऊं या ना आऊं, क्योंकि क्लासिक्स तो रोजाना आपके साथ हाजिर रहते हैं। वैसे अभी फिलहाल, इससे पहले कि मैं दूसरे गीत की तरफ रुक करूं, अपना आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज का ये जो दिन है 25 सितंबर, आज क्या कुछ खास हुआ अगर हम इतिहास के आईने में पलट कर देखें, तो मैं बताऊं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे खास व्यक्तित्वों ने जन्म लिया था। अलग अलग फील्ड्स को बिलोंग करते हैं वो, कोई साइंस की क्षेत्र से है, कोई है पॉलिटिक्स के क्षेत्र से, कोई अभिनय के क्षेत्र से, कोई स्पोर्ट्स से, तो सबके बारे में कुछ कुछ बातें आपके साथ मैं कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा साझा करती रहूंगी कुछ एक बातें। तो अभी सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। आज ही के दिन 1916 में उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेता थे। एकात्म मानववाद यानी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के आप प्रणेता थे और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। आपकी इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। एक और नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी, एक और जैसे कि मैंने कहा अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो आज के दिन अपना जन्मदिन मनाते, तो चलिए ना जिक्र किया जाए प्रोफेसर सतीश धवन का। 1920 में आज ही के दिन आप जन्मे थे, 25 सितंबर 1920 श्रीनगर में आपका जन्म हुआ। महान भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक हैं आप, कौन नहीं जानता आपको। एरोस्पेस इंजीनियर थे, भारत में प्रायोगिक द्रव गति की यानी एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स अनुसंधान का आपको जनक माना जाता है। 1972 से 1984 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक मजबूत दिशा दी। आपके कार्यकाल में ही भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट

साथ ही इनसैट और आईआरएस जैसे उपग्रहों को और एसएलवी 3 और पीएसएलवी जैसी प्रणालियों का जो आगे बढ़ने का मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। विज्ञान और इंजीनियरिंग में आपके अमूल्य योगदान के लिए 1971 में पद्म भूषण और 1981 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया था। आपको भी हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और भी ऐसे कुछ एक विशेष लोगों के बारे में आपको बताऊंगी, और भी बहुत सारी बातें मेरे पास जमा है, लेकिन उससे पहले चलिए एक और क्लासिक हो जाए आप सबके लिए। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में शर्मिली फिल्म का ही गाना मैं सुनवाना चाहूंगी। एसडी बर्मन ने संगीत बद्ध किया है इस गीत को और नीरज ने लिखा है आप सबके लिए। केवल और केवल चाय और क्लासिक्स पर चयनिका के साथ आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड कोलकाता।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना के बारे में। मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वे इनका उपयोग मनोरंजन और कार्य दोनों उद्देश्यों के लिए घरों और सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत प्राप्त राशि के माध्यम से मछुआरे ट्यूबवेल भी स्थापित कर सकते हैं। तो क्या उद्देश्य है इस योजना के? मछुआरों को आवास, सामुदायिक हॉल, पीने के लिए पानी और इसके अलावा कई सारी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करवाना। मछुआरों और उनके परिवारों की वित्तीय और सामाजिक प्रतिभूतियां सुनिश्चित करना और मछुआरों के जीवन स्तर का उन्नयन, साथ ही उन्नत तकनीकी जो आज फिलहाल प्रचलन में है मछुआरों को उसमें शिक्षित और प्रशिक्षित करना ताकि वो मछली पकड़ने के वैज्ञानिक तरीके सीख सकें। अच्छा, ये अब दूसरा जो प्रश्न आता है मन में वो ये है कि पात्रता के लिए मानदंड क्या है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे और जिनके साथ संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त किया है वो इस योजना के लिए पात्र हैं। अच्छा, मछुआरों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। आवेदक मछुआरों को BPL श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और अंतरदेशीय गतिविधियों में पूर्णकालिक रूप से संलग्न होना चाहिए। राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और फिश कॉपफेड के तहत काम करने वाले सभी समुद्री मछुआरों के लिए ये सरकारी योजना लाभ दे सकती है। आवेदन कैसे करेंगे? मछुआरों के कल्याण हेतु इस राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया राज्यों के अनुसार अलग अलग है, इसलिए इसे केवल ऑफलाइन ही भरा जा सकता है। तो करना ये है कि आप आवेदन के लिए निकटतम फिश कॉपफेड के कार्यालय में जाएं और वहां जाकर जितनी भी आवश्यक जो जरूरतें हैं, जो पेपर वर्क है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें, फिर दस्तावेज इकट्ठा करें, फॉर्म कलेक्ट करें, भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न कर उसके बाद फिश कॉपफेड में ही जाकर दोबारा से ये प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत जाना मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना के बारे में।
0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, 100.1 FM गोल्ड पर।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: तारीफ जरूर कीजिए और ये तारीफ के लायक ही हैं जिनके बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। आज ही के दिन जन्म हुआ था बिशन सिंह बेदी का भी। 1946 में आप जन्मे और ऐसे समय जन्मे जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और वहाँ हिंसा और अहिंसा के बीच की जो लड़ाई थी, वहाँ हिंसा जीती, हमारा देश जीता। और इस विश्वास ने शायद उनकी गेंदबाजी की शैली को भी प्रभावित किया। बिशन सिंह बेदी अपनी स्वाभाविक प्रतिभा, गेंद की उड़ान और बड़ी क्लेवरली अपने बल्लेबाजों को वो जिस तरह से चकमा देते थे उसके लिए पहचाने जाते थे। उस दौर में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जो ओपोनेंट्स थे उनको चकमा दिया, ऐसी गेंद डाली जब तेज और खतरनाक बाउंसर गेंदबाजी को प्राथमिकता दी जाती थी। उस वक्त आप स्पिनर हैं और फिर भी आपने झंडे गाड़े हैं अपने नाम के, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा आपके लिए। 25 सितंबर आज ही के दिन 1945 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे बिशन सिंह बेदी को 15 वर्ष की आयु में उत्तरी पंजाब की एक राज्य टीम ने चुना था और वो खेलते रहे वहीं पर उस टीम के साथ। और उनका जैसे जैसे कौशल निखरा, उनकी स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई, तो वो दिल्ली चले गए और 1981 में वहीं पर आप खेलते रहे। और 21 वर्ष की आयु में कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए आपने पदार्पण किया और अगले 12 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहते हुए भारत के प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाजों में से एक के रूप में आप जाने गए। उस दौर में फिर से कहना चाहूंगी कि जब बड़े ही धुआंधार खतरनाक बाउंसर गेंदबाज हुआ करते थे, उस दौर में स्पिन गेंदबाजों की जो संख्या थी वो कम ही थी और उस वक्त ऐसा नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन शायर में वहाँ के जो काउंटी क्लब है उसके लिए भी आपने बड़े पैमाने पर खेला और आज तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में आपका नाम शामिल है। 370 प्रथम श्रेणी के मैच आपने खेले जहाँ 1560 विकेट आपने चटकाए थे। आपको विभावभीनी श्रद्धांजलि बिशन सिंह बेदी आपकी जयंती पर। और अब समय हो चला है कि अगले गीत की तरफ हम रुख करें। क्लासिक्स का जो दौर है ये चलता रहेगा क्योंकि अभी भी फिलहाल हमारे पास इस भाग में 11 मिनट शेष हैं, तो दो गीत तो यहाँ बनते हैं बस। चलिए सुनते हैं फिलहाल किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म का ये युगल गीत जिसे शैलेंद्र ने लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। और जो गीत हमने अभी भी सुना थोड़ी देर पहले मोहम्मद रफी की आवाज थी। फिल्म का नाम याद है आपको, शक्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी थी फिल्म कश्मीर की कली। ओपी नैयर का संगीत था और SH बिहारी ने ये गीत लिखा था। तो चलिए सुनते हैं अभी फिलहाल गाइड का ये प्यारा सा युगल गीत जो अपने दौर में ही नहीं बल्कि आज भी सुपरहिट है, लोग बस गाते गुनगुनाते रहते हैं।

एक जरूरी सूचना। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 एमजी रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाक घर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने

सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से rmssbdn@gmail.com इस ईमेल आईडी पर विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखकर अधीक्षक RMS SB बंडल हावड़ा 7111 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वो दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वो इस निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। याद रहे कि कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपर्युक्त यानी जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। चाय और क्लासिक्स का पहला भाग अभी अभी सिमटने वाला है बस, और सिमटने से पहले या इसको यहां पर समय देने से पहले, न्यूज ब्रेक की तरफ जाने से पहले आप सबके लिए एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें

0: जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadanagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadanagar gave him

0: का जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दिए तो जल ही उठे हैं, शाम एकदम जवान और चाय और क्लासिक्स के दूसरे भाग के साथ चैनिका हाजिर है आपके साथ। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड कोलकाता। फिलहाल घड़ी में समय 6:17 और 48 सेकंड्स। और आपको मैं बताऊं कि आज का जो दिन है ना, ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन महेंद्र सिंह धोनी दुबई में एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करके 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बने। ये मुकाबला 25 सितंबर 2018 को खेला गया था, जिसमें नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति के कारण लगभग 696 दिनों के अंतराल के बाद धोनी ने एक बार फिर टीम की कमान संभाली थी और ये रोमांचक मैच टाई पर समाप्त हुआ था। उस दिन उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन एक के बारे में मैं बताना चाहूंगी। पहले तो ये कि ये जो मैच था ना, भारत के सभी क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशनुमा सरप्राइज लेकर आया था, क्योंकि दोबारा धोनी को इंडियन टीम की कप्तानी करते देखना किसी सपने से कम नहीं था। और अब रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं, एक ही रिकॉर्ड के बारे में आज बताऊंगी कि इस मैच के साथ महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बुजुर्ग कप्तान भी बने, यानी 37 साल 80 दिन की उम्र में कैप्टनसी करके उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और भी कई रिकॉर्ड तोड़े थे, उसके बारे में आप पता लगाइए। चलिए, छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया। उस दिन 25 सितंबर 2018 को महेंद्र सिंह धोनी जब खेल के मैदान में उतरे तो और उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े या नए रिकॉर्ड बनाए, आप पता लगाइएगा। फिलहाल तो चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुने, लेकिन उससे पहले एक और जन्मदिन है बड़ा ही खास सा, उनके बारे में बता दूं। जयंती है आज फिरोज खान की। 1935 में आज ही के दिन आप जन्मे बेंगलोर में। उस वक्त ये बेंगलोर हुआ करता था, अभी बेंगलुरु है। तो बहुत ही स्टाइलिश और रॉयल एक्टर समझे जाने वाले फिरोज खान। कहते ना, एक लेगेसी होती है, अलग एक मकाम, अलग एक पहचान आपने अपनी बनाई और अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के बीच अलग जगह बनाई। केवल एक्टिंग नहीं की आप, तो फिल्म मेकर भी रहे, आपने फिल्में बनाई और बड़ी खास स्क्रीन प्रेजेंस थी आपकी, बहुत बोल्ड अंदाज, अलग स्टाइल, हमेशा आप सुर्खियों में रहे। अभिनय के अलावा, जैसे कि मैंने कहा, निर्देशन में आपने हाथ आजमाया, प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी आपने काम किया, एक्टिव रहे। पूरे करियर में 60 से अधिक फिल्मों में आपने अभिनय किया और निजी जिंदगी भी हमेशा हमेशा न्यूज़ में रही। अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सफल फिल्मों में आपने काम किया, जिनमें औरत, सफ़र, मेला, उपासना, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना और धर्मात्मा जैसी फिल्में याद आती हैं। दयावान, मीत मेरे मन के यलगार, प्रेम अगन, जानशीन जैसी फिल्मों में आपने अभिनय के साथ साथ इन फिल्मों का निर्देशन भी किया था। तो सुनते हैं एक गीत फिरोज खान पर फिल्माया गया, सफर फिल्म का ये गाना मुकेश की आवाज में आप सबके लिए।

इंदिवर ने लिखा है इस गीत को और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। सफर फिल्म का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। और चलते चलते आपको बताना चाहूंगी लोकल इवेंट्स के बारे में। एक बहुत ही रोचक इवेंट मेरी नजर में पड़ा तो मुझे लगा आपके साथ साझा करूं। इको पार्क बटरफ्लाई गार्डन में 27 सितंबर दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम को ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, डिकोडिंग बटरफ्लाइज। इसके साथ तितलियों की आकर्षक दुनिया में आप कदम रखें। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है आपको बताऊं, इको पार्क बटरफ्लाई गार्डन में 2 घंटे की एक अर्थ वॉक का आयोजन किया गया है। और उस अर्थ वॉक यानी पृथ्वी वॉक के अंतर्गत ये डिकोडिंग बटरफ्लाइज जो इवेंट है ये शामिल है। नेचुरलिस्ट तीर्थंकर चौधरी के नेतृत्व में

यह आकर्षक अनुभव प्रतिभागियों को तितलियों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही उनकी पहचान, व्यवहार, जीवन चक्र, आवास और पारिस्थितिक महत्व के बारे में जानने का मौका भी आपको मिलेगा। इसकी टिकट्स जो हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके अलावा कॉर्नफील्ड रोड स्थित एक कैफे में 27 तारीख को दोपहर हिल्सा फिश के एक क्यूरेटेड मेन्यू की पेशकश रहेगी। इलिश का सीजन जा रहा है ना, तो अगर दिल करे खाने का तो चले जाइए। 22 सितंबर से लेकर 30 तारीख तक एक निजी क्रूज संस्था ने गंगा आरती क्रूज की व्यवस्था की है। ₹450 प्रति व्यक्ति के खर्च पर कम से कम 7 से 8 लोगों का एक स्लॉट होगा। बाबूघाट और रामकृष्णपुर घाट की गंगा आरती आप देख सकेंगे। और इसी के साथ चलने का कहती टाटा बाय बाय। चाय और क्लासिक्स पर हम थे साथ, और सच में कितने मजे की हुई आज की ये शाम, बहुत ही बेहतरीन समय हमने बिताया क्लासिक्स के साथ। अंतिम गीत आप सबकी नजर किशोर कुमार की आवाज में।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार ए के भट्टाचार्य स्टूडियो में आमंत्रित हैं. नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स राइजेस 315 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबाउट 23,100. Industry needs to be remain globally competitive to attract foreign capital, says Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran. And global crude oil prices decline.

प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स 315 अंकों की वृद्धि में रहा। निफ्टी 23,100 के स्तर को पार कर गया। विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना जरूरी है, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नगेश्वरन ने। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.43% की तेजी से 315 अंक बढ़कर 73,896 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.34% की बढ़त से 77 अंक ऊपर 23,141 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला था. मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% से अधिक की गिरावट में रहा. हालांकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बाजार आज सुबह सपाट खुले थे. अधिकांश सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निचली कीमतों पर हुई खरीदारी के समर्थन से कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार में तेजी आ गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex rose 315 points, or 0.43%, to close at 73,896. Nifty gained 77 points, or 0.34%, to settle at 23,141. The broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index dropped over 0.1%, while the small-cap 100 index rose more than 0.1%. Markets opened flat this morning amid mixed global cues. Sensex and Nifty stayed subdued through most of the session, but staged a recovery in the final hour, supported by a decline in crude prices and value buying.
1: और कंपनियों पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 2.8%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.2% से अधिक और एशियन पेंट्स का शेयर 1.9% की वृद्धि में रहे. इसके विपरीत ट्रेंट का शेयर 1.4% गिर गया. इंफोसिस के शेयर में 0.8% की गिरावट आई और कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% के नुकसान में रहा.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 28 sectors edged upward, with commodities remaining unchanged. Among the top gainers, consumer durables jumped 1.1%, auto surged over 0.9%, and realty rose over 0.6%. Conversely, hospitals declined 2.1%, healthcare lost 0.5%, and oil and gas, as well as telecommunications, dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,210 companies advanced, 2,146 companies declined, and 220 companies remained unchanged.
1: और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. मिस्टर भट्टाचार्य, कल की जो भारी गिरावट आई उसके बाद आज जो कारोबार हमने देखा है 300 अंकों से अधिक बढ़ा है सेंसेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या रीजन रहा आपके अनुसार?
2: पहली बात तो ये है कि रिकवरी हुई है. कल जैसे आपने कहा कि बहुत भारी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो वैल्यू बाई हुई है उसके लिए ये उसके लिए जिम्मेदार है. पर ये जो रिकवरी जो हुई है उसकी जो कल की जो जो सेटबैक जो या लॉस जो थी उससे आधी भी रिकवरी नहीं हुई है. तो मार्केट में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है मार्केट के साथ, और उसका एक प्रधान इंडिकेशन ये है कि आज की भी जो गेंस हुई हैं उसमें भी अगर आप देखें तो FII नेट सेल किया है.

0: डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज़रिए से ये मार्केट में ये चढ़ाव आया है। तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, पर एफआई की जो मतलब बिकवाली के कारण वो मार्केट नीचे जाती है, और जिस समय मार्केट चढ़ती है उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसी तरह वो सटीक रहते हैं पर एफआईआई भी निकल जाते हैं। तो इसका एक एक एक कारण यही है कि जो एफआईआई अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं किस तरह से इंटरनेशनल यूएस मार्केट का रुख देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे यील्ड्स अभी भी बढ़ती रही है और इसीलिए वो ज्यों ही एक मौका देखते हैं, अगर रुपए में थोड़ी बहुत जान आ जाती है उससे वो अगर मान लीजिए रुपए थोड़ा अप्रिशिएट करती है तो वो भी एक इंसेंटिव होता है उनके लिए पैसे ले जाने का। और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम जो है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, इतना लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा है मार्केट से। अगर आप आईपीओ कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज जो इन्फ्लोज जो आए हैं उसके लिए लिक्विडिटी है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओएमओ लिक्विडिटी ड्रेन आउट करने के लिए हुआ है वो भी एक कारण है ये इस मार्केट की चढ़ाव और उतराव ज़्यादा चढ़ाव कम।
1: तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो एफआईआईज़ हैं उनका फोकस अलग फैक्टर्स पे है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका शायद दे आर लुकिंग इनवर्ड, जो हमारी मजबूती है।
0: देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट की जो एक बुनियादी ढांचा जो बदल रहा है वही प्रतिफलित करता है कि हमारे इसमें अगर आप पिछले 6 साल में ये ट्रेंड देखें कि डायरेक्ट इक्विटी कम हो गई है, इंश्योरेंस कम हो गया है, बैंक सेविंग्स कम हो गया है, पर एक चीज़ जो बढ़ता रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स। और वो म्यूचुअल फंड की जो पिछले 6 साल की जो जो जो आंकड़े दिखते हैं वो करीबन 10% की वृद्धि हुई है, हालांकि सारे जो मैंने कैश बोलिए या डायरेक्ट इक्विटी बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए या पेंशन फंड्स बोलिए, ये सारों में डिक्लाइन हुआ है और उस डिक्लाइन को कॉम्पेंसेट किया है म्यूचुअल फंड्स ने। और म्यूचुअल फंड्स ही आज डायरेक्ट जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पहली एक उनकी, तो ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो अभी भी जो अभी जो जो जो जान जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के जरिए बची हुई है।
2: AKB, let's now come to specific sectors. The auto index actually went up by 1%. Some of the prominent companies actually went up by as much as 2 and 2.5%. What are the reasons? Borrowing costs are creeping.

0: डिफरेंट उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, कि कैसा आप परिदृश्य देखते हैं या आने वाले भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और नागेश्वर जी ने पहले भी इसके बारे में इनकी हमारी दृष्टि आकर्षित किया है। जो जिस तरह से हमारी जो देश की आर्थिक वृद्धि दर चली है पिछले 3 दशक में, और इस वक्त जो वातावरण जो है, जो परिस्थितियां जो हैं, वो इतनी अनसर्टेन है, अनिश्चयता से गुजर रही हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो रिस्क बढ़ गई है, उस समय उनका ये कहना है कि हालांकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें स्टेबिलिटी लानी है जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा हमारी बरकरार रहे, पर उसके साथ साथ ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडल की जरूरत है, और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में उनका यही कहना है कि जो अब तक हम करे आ रहे हैं वो शायद काफी नहीं होगा, आगे हमें और भी जो आगामी काल के लिए हमें उसको
0: जो सुधारों की गति है वो जारी रहनी
1: जरूरी है।
2: In more news, the government, in consultation with the Reserve Bank of India, RBI, will borrow 7,86,000 crore rupees in the second half of the current financial year. This includes a sovereign green bonds issuance of 15,000 crore rupees, according to an official statement of the Finance Ministry. The borrowing will be executed through 23 weekly auctions. With this, the total borrowing for the full financial year is expected to reach 15.9 lakh crore via dated securities. For the benefit of our listeners on Akashvani, tell us, what are the sovereign green bonds and the debt to GDP ratio that India economy is facing?
1: Well, this development has greater significance for how the government is going to play out in its fiscal consolidation program. Green bonds is a very small part of the overall borrowing, as you can make out that out of 15 lakh crore of borrowing or 16 lakh crore borrowing, you have a very small amount of green bond, but it sends out a very positive signal to the market. But the bigger signal to the market, a very reassuring signal at that, is that the government's commitment on 4.4% of fiscal deficit, which is actually what is composed of these borrowings, will remain under check, and the government is preparing for meeting that target. From 4.4, it is supposed to come down to 4.3 in the current year. And if this number is what the government is planning to borrow in the second half, which means that it will not exceed its borrowing levels
2: as per the FRBM
1: and as far as the commitment that the government made in parliament. For fiscal hawks and the fiscal consolidation program watchers, this is really a piece of good news.
0: और लेते अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा उत्पादन बढ़ा है उसकी बात कही कि 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और रक्षा उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया, 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए। इसमें कितना इम्पोर्टेंट है नए जो सेक्टर्स हैं उसमें।
1: एक अभी तक हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात, अब लग रहा है कि एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम हुआ है उसके ऊपर वो हमारा आकर्षित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हालांकि ज्यादातर मोबाइल फोन का हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में बहुत ही एक अभूतपूर्व एक वृद्धि, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें एक नई तेजी आई है, नई रफ्तार आई है। तो मैं समझता हूं कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके वो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत

0: श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसी गतिविधियां देखी हैं। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव जरूरी है जिससे वो दुनिया की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दिखा सके। उन्होंने कहा कि जो देश संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का विरोध करते हैं वे उसे मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन किए बिना लगातार इस संगठन का उपयोग नहीं कर सकते। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधारों का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैंग्रोव संरक्षण तथा आपदारोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with many colours of their service.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years of its launch. In a social media post, Mr. Modi said, "The initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India." He said, "This transformation is visible across sectors." The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise, and innovation that allows India to grow and prosper. National President of Bharatiya Janata Party and Rajya Sabha MP Nitin Naveen has said that the BJP's policy has always been guided

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें

0: समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सात सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन सात सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं, अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
7: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
10: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
9: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress. Highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticizes those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elengovan bags bronze in women's pole vault. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said, Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
12: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी,
0: चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने

जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, GST, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का